0: दिया था सामने मशाबलाइन विजुअली एंटायर सोसाइटी के हो रहा मेंबर उन
1: वाला हास्य को हम और पड़ा तो सवर बड़ा हिदाय एलावा हम हास्य को लानेंगे
2: और देवे पर बाकी वेला नेंगे हम वे
1: में बाजे रेगन कहते में
2: नो देखे मेगाट्स दिवे हेफे मकोरियम में दानी

0: कुछ नहीं निकल रहा है, खाली पसीना निकल रहा है।
1: फिल्म लिपुन बोरु तारुही बब्बा लारुमी फिल्म गे वाहक गे निस्तीफा वागोता फिल्म उन फिनिगेंदा एक्टी नगिना बेगे तौरी फ्लिप फवे आदि फिल्म गे म्यूजिक कीवस गिना बेक वरक खमुदी एचे वके खास को फिल्म उन इविगेंदा सनो एक पलचेन मिलावे की बेलुन तेरिन फुं असर तके कुरवे लवे मीगे कुरिन नुसरत फतेह अलीहान गे अडुं इविगेंदिया मिलावा मि फिल्म का किया फवनी राहत फतेह अलीहान

0: Alternative hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Guest the Dialogue. तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे, वादा करो मुझसे।
2: अगर मैं दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है।
1: हाँ दी, अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं दी, मैं जा रही हूं।
2: सुनो, उसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उसे?
1: मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाए।
3: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बाला ना साड़ी शोया। जवाब फणों में सुंगड़िया की अंगार दो होग में दम बार गड़ सु मिनट। कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गिंदा बाला ना साड़ी मी शोग गेनेस दे केस्ता डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफार नगा गुरातुं खास हादिया ली बेने। एम गीण सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरी नगाणी कोम में महगे वेस एम में फाहुश होगा।
1: गेस द डायलॉग।
4: हिंदी सिनेमा के एम मकबूल एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कमावा डोन्ने बुनुमु ए फिल्म नेंगे मीहा कुमदवाने मी एकिए की जील तक एकी गोयकोतों खास सवा फिल्में मी हफ्तागे एहारा मिहार मी बैग मी बलालनी नवार सते का है दिहा अवनाहरु निर्णु डुन्ना एगे फहुं दिहास हवनाहरु निर्णु डोन द चेस बिगिन सगेन।
5: एरा मिहार

0: ಫಿಲ್ಮು ಎಮ್ಮೆ ಬುಡ ಫಾಹಕುರೆವೆಣಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಕುಳದಾಣ ಡುವಲ್ ರೋಲ್, ಏನವಣಿ ಹರುಕಶಿ ಡೋನ್ಗೆ ರೋಲಾ ಮಡುಮ್ಯಾತಿರಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ರೋಲ್ ನುಹಣು ಫುರಿಹಮೆ ಅದಾಕೊಫ. ಮೇ ಫಿಲ್ಮಕ್ಕೆ ಏರುಗೆ ಜಮಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಗುಳೇ ಗೊತ್ತಗು ಫದ್ದಾಫವಾ ಯಕ್ಷಣ ಅಸರುಗದ ಡ್ರಾಮಾಯ ಹಿಗ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಿ ವರುಗದ ಡೈಲಾಗ್ ತಯಕುಲವೆ ಮಸಾಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನೈ. ಮೀ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಎಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಸಿಫ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದೆ ದಕ್ಕುವಾದಿಂಗ್ ಎಂಗ್ ಉಫೆದ್ದು ವೆಸ್ಮೆ.
1: नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई.
2: डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो.
3: डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. मैं तुम्हारे साथ आई, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी.
1: कौन रमेश?
3: बहुत चलाक होना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं.
0: अमिताभ के मिहिट कैकड़ का तीरिस आहार फुरुम फहुं देहा सवन आहार फिल्म के लियुंतेरिया जावेद अख्तर के दरिफुलो फरहान अख्तर वनी आ जील का डॉन अलम तारफ को दीफा.
4: शहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार, कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में. जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूं अपनी शर्तों पर. जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है. अरे दीवानो, अब तो पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन.
5: यस, हु इज इट?
0: एक्सेल एंटरटेनमेंट के दशुं रितेश सिद्वानिया फरहान अख्तर प्रोड्यूस करी मी फिल्म के लीड रोलम फेनिगें दी शाहरुख खान, रोमा के रोलम फेनिगें दी प्रियंका चोपड़ा, मी गेतरुं अर्जुन रामपाल, ईशा कोपिकर, बोमन ईरानी, ओम पुरी आदि पवन मल्होत्रा फेनिगें दियेरु करीना कपूर के खास फेनिलुमे मी फिल्म फेनिगें दिया.

0: ए खियाल तका सहुराया केल देवुनी मा पोडा
1: मिहा
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वाले वुनु मिहा तेने एकमकु अशाना बलहट्टा केन हुरी ओळवालन सहुराया कुरेवेने एव्विस कमेने वी हुरी हा कमका बुनेमुनु इच्छे बुनेवुनी अशाना बलहट्टा केन हुट्टा
1: दरफुले कोंगे रक आई
2: मम्मा हैप्पी एन्नोंदो
0: अशाना एही जहुरा ए पहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआंवे मी मम्मा बेनु बिगोई
0: जहुरा देखि वाहाका अशाना कबूल एन्नु कुरे वो मायकु कुरंगे कंतो के वाहाका देखकुम के पतल का तेमवेस अशाना देखि एहिं वाहाके
2: मम्मा नुजे न तिहें उलेका डैडी आलु मेरी कुरम वेनु
0: अशाना मडु मडुम बुनी
1: दरफला डैडी आए को नोले विगे नैनो मम्मा डिवोर्स वे ऐ नोनस मिहा हैप्पी को उले उले फा देंगे वह कुट्टा ला कामा कुत्ता दरी फुलती आई
0: वारा लोए पाए को जहुरा पुनी
2: बादी यो बकिया मेरी कुरम वीनों हैं ऐ वे मम्मा के कहतो बुननी बालालम वेके मियाई
1: अब वह कुरम वीनो डैडी की क्या बुने
2: डैडी पुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने तिया मम्मा कह रही गाहाल बाला शो ए वाह का दक्कालम डैडी गुलियस मसले नहीं है
3: आदि सिफर नदी के मेगहर्ट्स दिवे हिफे मटियों को लेंती बेहुन तेरी ना उफावेर वागुत कोल कंगे दे देम में अलगों में मिगेनस तिनी बिम्मा इब्राहिम वहीद के वाह का इश्क मी गेनेस दिनी मी वाह के आगे बाविस वन बै मी अफ्ता के बैत कुलम का बैवरी जहुरा नजरत रशीद नसीफ हुसैन रशीद लैला फातमत वहीदा आदि अशाना के बैक उड़े दिनी शाहिहा अहमद मी हफ्ता के बैल सेहुन तेरे न कमदी का मोमीद करूँ अन्न हफ्ता के मी वाह कैग मुलेंग आबे कैग की का पतलो कोलुम मी गड़िया वाकी वेलाना वस्सलाम अलैकुम
4: ऑडियो वाहका

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दी वही एफएम 9.1 मेगाहर्ट्ज़।